0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: करो, बंद करो, बंद करो।
1: 89.6
2: मिर्ची।

0: इसे कहते हैं ना फुल ऑन ब्रेक।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी सुबह को खूबसूरत एंड हसीन बनाने के लिए मैं आ ही चली हूँ. एंड इस बार के ब्रेक की बात करें, ईद की छुट्टियों की बात करें, तो भाई अलग रौनक, अलग खुशी जो है हमारी जिंदगी में जरूर शामिल हुई. जहाँ पे एक तरफ फेस्टिव वाइब में हमने खुद को पूरी तरह से इमर्स किया, वहीं दूसरी तरफ एक्सटेंडेड हॉलीडे ने इस खुशी में चार चांद लगा ही दिया. तो यह खुशियाँ जो है हमने बहुत मना ली. अब जरा इसे एक्सटेंड कर लें काम काज के जरिए. बहुत हो गया आराम, अब जरा कर लें काम. देखिए मैंने तो काम का शुरू कर दिया, यानी कि बातचीत का. आप भी अपने अपने काम पे लग जाएं. एंड इस वक्त अगर मेरे साथ कनेक्टेड है तो फटाफट से मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दें 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखर से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानूं, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ऐसा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: चाय लवर्स की ये दास्तान जो है ना बड़ी निराली है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. अगर आप चाय लवर हैं तो मेरी इस बात से जरूर कनेक्ट करेंगे। देखिए बात इतनी होती है कि अक्सर ना हमें गर्मी के दिनों में कुछ भी गर्म खाने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है नहीं यार, ठंडा ठंडा कुछ दो, दही चावल दो, आमरस रोटी दो, गर्म चीजों की बात ही ना करो। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी है जिसके बिना हमारी गर्मी भी पूरी तरह से अधूरी है, वो है गर्मा गर्म चाय की वो प्याली। नहीं, ये कॉम्बिनेशन मुझे आज तक जनरली कभी समझ नहीं आया। तो भैया गर्मी के दिनों में बाकी गर्म चीजें तुम्हें ना पसंद आए लेकिन चाय आखिरकार क्यों, कैसे? देखो ये बात जो है ना आप मुझे बताना जरूर है। गर्मी की बात करते हुए कतर का मौसम जो है इस वक्त एक बार फिर से मुझे याद आ गया। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 41, मिनिमम अराउंड 30। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है इस वक्त पीते रहें, कलेजे दबा के ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi, this is Aamir Khan.
4: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा.
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: तो बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है. डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं जो शाम को समंदर के पास बैठ कर बस हवा को फील करना चाहते हैं. वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं. देखो यार, ऑयल एंड स्काईस्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी. डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है. सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है. भाई, समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं. शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती. वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली. हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं, मुझे मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ले तू कौन संभालेगा तुझको जब

0: देखिए क्वीन तो आप हैं ही, जरा इस वक्त ये बात आपको महसूस भी करा दें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जब तक रानी को वो रानी की तरह महसूस ना कराओ तब तक बात कैसे बने। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रानी की हम बात करें तो वो होती है हमारी माँ। यार हमारी जिंदगी को जिसने पूरी तरह से राजा की तरह बनाया वो हमारी रानी महारानी ना हो तो फिर क्या ही हो। तो चलिए जी, जितनी भी मॉमीज उस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, या आपकी वाइफ एक प्यारी सी मॉमी है, आपकी मम्मी खुद एक बहुत ही प्यारी सी मॉमी है, तो मिर्ची उनके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना ही वो सिर्फ राइज एंड शाइन कर सकती हैं बल्कि अपने अंदर की उस क्वीन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। बिल्कुल, इसकी एंट्रीज जो है अब हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि इस पेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस रेड कार्पेट में आपको वॉक करना है, बहुत सारी खूबसूरत सी यादें अपने लिए संजोनी है, बनानी है, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक खास इवेंट का हिस्सा बनना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से एंट्रीज के लिए आपको एक ही काम करना होगा, एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का रील। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, एक फनी वीडियो हो सकता है, कंपाइलेशन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकता है, डांस, ड्रामा, पोएट्री, व्हाट एवर यू लाइक। बस ये वीडियो जो है आपके और आपके बच्चे के खूबसूरत बॉन्ड को डिपिक्ट करना चाहिए, और बस हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896। अगर आप सेलेक्ट हुए तो ऑडिशंस पे आपको बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो पेजेंट यानी कि मेन ऑन ग्राउंड इवेंट में आपको ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेमोरीज बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके अलावा ताज भी आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट से एंट्रीज भेजें। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटक।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी,
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: هالة كيف الحال؟
1: مرتي أنشو مرتي أنشو مرتي أنشو مرتي أنشو.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. बस क्या हाल चाल, यही जानने की मैंने कोशिश की. वाले एक बात बताऊं, हाल जो है बड़ा कमाल समर्स आपका कतर में होने वाला है. देखिए वो दिन जो है और वो दौर जो है पीछे ही छूट चुका, जब गर्मी के दिनों में ऐसा लगता था कि भैया एसी ऑन करो एंड घर के अंदर बैठो, कब ये मौसम जो है खत्म हो. इस वक्त कतर जो है पूरी तरह से समर की डेफिनेशन को चेंज करने में लग चुका है. एंड साथ ही कुछ ऐसे खास एक्सपीरियंसेस आएंगे जो गर्मी में आपको ठंडी का एहसास है ना 101% देंगे, बिकॉज समर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेलिब्रेटरी दिस ईयर. जरा इमेजिन करें, अगर मैं बोलूं माइनक्राफ्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कतर टॉय फेस्टिवल, फंटाना वाटर सर्कस, लाइव कॉन्सर्ट्स, लग्जरी स्टेकेशंस, वाटर पार्क्स, फैमिली एंटरटेनमेंट, शॉपिंग फेस्टिवल्स, इंडोर एक्सपीरियंसेस, एंड द लिस्ट गोज ऑन. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब में अंशु का साथ. तो बताएं समर्स जो है आपके लिए कमाल ना बने तो क्या ही बने. एंड इस बार कतर में बहुत कुछ लाइन अप है जो अगले 3 से 4 महीने आपकी जिंदगी में ना सुख चैन शांति के अलावा ढेर सारा थ्रिल भी है बस ऐड ही करने वाला है. भैया कतर जो है कहीं ना कहीं नानी की याद दिला रहा है यार, बचपन के वो दिन, नानी का घर, हर साल की आइटिनरी फिक्स. हाँ, कोई डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अड्डा जो है फिक्स होता था. गर्मी की छुट्टियां जो है नानी के घर ही बीतेंगी एंड बड़ी कमाल तरह से बीतेंगी. याद आया नानी के घर का कोई एक्सपीरियंस याद है, शेयर जरूर करना 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. भैया हम तो हाला समर 2026 का भी इंतजार कर ही रहे. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Arz kiya hai.
2: Irshad, irshad.

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं?
3: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot.

0: यार ये बात तो तय है कि अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मुझे अपने दोस्तों के साथ वो स्पेन रोड ट्रिप में जरूर जाना है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You are listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. ये बात आप भी अग्री करेंगे कि पिक्चरों ने, फिल्मों ने हमारी जिंदगी में क्या गजब कमाल का रोल निभाया है। कई फिल्मों ने हमें रुलाया, कईयों ने हमें हंसाया, कईयों ने मोहब्बत करना सिखाया, तो कईयों ने टूटे हुए दिल को फिर से कैसे जोड़ते हैं ये बात सिखाई, कईयों ने हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन से पूरी तरह से भर दिया, तो कईयों ने रिश्तों की इज्जत करना सिखाई। या लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने सही मायने में मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया तो वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए इस फिल्म की डिटेल्स तो आप में से कईयों को बताऊंगे, लेकिन इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूं। आपको वो याद है स्पेन रोड ट्रिप, वो दोस्ती, वो लाइफ लेसन, स्काई डाइविंग, टमाटिना, एवरीथिंग। आपको मालूम है इस फिल्म के रिलीज के बाद टूरिज्म जो है इंडिया से स्पेन के लिए कुछ इस तरह से बढ़ा कि स्पेन टूरिज्म बोर्ड ने एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडियन सब ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए स्पेन आने लगे। इमेजिन, अ बॉलीवुड फिल्म लिटरली चेंज ट्रैवल ट्रेंड्स। Now people suddenly wanted road trips, adventure sports, bachelor trips, solo traveling. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये एक फिल्म नहीं थी भाई, इसने एक एंटायर जनरेशन का पूरा माइंडसेट बदल दिया। अब देखिए, इसके पहले हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता था जॉब एंड स्टेबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद लोगों ने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया। और वैसे यही एक्सपीरियंस हुआ था दिल चाहता है के बाद, जब लोगों ने गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखना शुरू किया। आप मुझे बताएं कौन सी फिल्म ने आपको हाईली इन्फ्लुएंस किया। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजाम और आज जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: ओह वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda, Bollywood Bolda,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Mirchi stories, stories.
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: फिर औरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब जरा खुद के लिए भी जी ले।
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में अगर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने की कोशिश करूं जिसने हमेशा खुद से पहले औरों के बारे में सोचा, खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, तो वो है हमारी माँ। यार चाहे खुद कितनी भी भूखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पेट भर जाए ना तो उन्हें जो है तसल्ली एंड खुशी मिल ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अगर सुकून एंड चैन की नींद सो लेना तो उनकी नींद जो है वो हो ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हम जो है ज़रा सा मुस्कुरा देना तो उनका दिन जो है वो बन ही जाता था। जिस माँ ने इतना कुछ किया, क्यों ना अब हम उसके लिए कुछ कर लें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेशल इवेंट दैट इज मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जो एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखिए बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मॉमी जो है एक सुपर मॉमी है, आप खुद जो है एक सुपर मॉमी है, या आपकी वाइफ एक बड़ी ही प्यारी सी मॉमी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार। फटाफट से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई है, इस रेड कार्पेट पर चलने की बारी आ गई है, इस इवेंट में बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने की बारी हो गई है। एंट्री के लिए एक ही काम करना है, फटाफट से एक मिनट का रील बनाना है आपको अपने बच्चे के साथ, दैट डिपिक्ट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ शेयर, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000186। रील में होना क्या चाहिए, कुछ भी यार, कोई फनी रील बनाए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो आपको पसंद है, एंड बस हमें भेज दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, ऑडिशन में अगर सेलेक्ट हुए तो बस पेजेंट का हिस्सा आप जो है अपने बच्चे के साथ जरूर बनेंगे, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000186, वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज। डेडलाइन जो है बस इस थर्सडे तक ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. Na virbala, burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ। आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ। जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं। आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा।
2: यार
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: ile
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, Qatar में summers जो है वो full on आ चुके हैं और आपने अब अगर सुख वाकिफ के mango festival का wait ना किया तो फिर क्या ही किया? अरे बस वही festival जहां आम सिर्फ खाए नहीं जाते बल्कि पूरी तरह से celebrate किए जाते हैं. Indian mangoes, पाकिस्तानी mangoes, यार हर variety का अपना एक अलग fan base है. कहीं वो रत्नागिरी अल्फांजो का craze तो कहीं चौसा की वो sweetness, कहीं लंगड़ा का taste and भाई वो घर वाला आम का अचार यहाँ पे ना हमें जरूर मिल जाता है. सच कहूँ उसकी खुशबू ही ना मैं ऑफिशियली अपने बचपन मोड में चली जाती हूँ. लेकिन चलिए इस वक्त ना अगर मैं इंडियन मैंगोज की बात करूँ तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. इंडिया ग्रोज नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगोज. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दुनिया भर का आधा आम जो है ना इंडिया में ही होता है. एंड मैंगोज आर ग्रोन अक्रॉस ऑलमोस्ट 2.2 to 2.5 million हेक्टेयर्स इन इंडिया. इसके साथ ही ये भारत का लार्जेस्ट फ्रूट क्रॉप है. लेकिन बात इतनी है कि जितने मैंगोज प्रोड्यूस किए जाते हैं ना भारत सिर्फ उसका 1% ही एक्सपोर्ट करता है. मतलब हम खुद ही इतने आम खा जाते हैं कि दुनिया क्या ही पहुंचाएंगे बढ़िया है जी. लेकिन जितने आम कतर में आते हैं हम जो है ना बड़े खुश हैं. इनफैक्ट कतर एक ऐसी जगह है भाई जहां पे आपको 12 महीने आम खाने को मिलता है. बहुत अच्छी तरह से आप ये बात जानते हैं. तो हम तो अपने घर वालों को यही कहते हैं, भैया तुम तो साल के 3-4 महीने खाते होगे, हम तो 12 के 12 महीने कमाल दुनिया भर के आम खाते. क्या कहती पब्लिक? वेल, जैसे ही डेट्स आएंगी सुख वाकिफ मैंगो फेस्टिवल की मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी. अगर आप घर पे आम का अचार बनाए तो प्लीज मुझ तक पहुंचा देना. 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दोस्तों, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: भाई साहब, औरों का दिमाग जो है ना, जरा बाद में हिलाइएगा, इस वक्त अपना शरीर ही हिला लो।
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार, ये जो मानव प्रजाति है ना, ये बड़ी कमाल है। जरा सोचो, जब भी तबीयत जो है जरा ज्यादा खराब हो, लगे कि ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक हो गया, डाइजेशन जो है खराब हो गया, शरीर में काफी हेवीनेस लग रहा है, हम देखो कैसे हिल डुल के इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वो मोटी मोटी गोलियां खाएंगे। लेकिन ना, सतर्कता के तौर पर उसके पहले जो अभियान अपनाना है ना, वो ना करेंगे। चलिए, इस वक्त आपकी सेहत को सुधारने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताई दूं। क्या आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वॉक After meals, it can actually help control blood sugar spikes, improve digestion and reduce heaviness after eating. तो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10 मिनट भी चलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खा के तुरंत जो आपको जिम पहुंच जाना है। मैं हल्की फुल्की वॉकिंग की बात कर रही हूँ, और साइंस जो है एक ही बात कहता है, इवन स्लो वॉकिंग आफ्टर फूड हेल्प्स योर मसल्स यूज ग्लूकोज बेटर। तो अब सेहत को अपने काबू में करने की बारी आ गई है, शरीर को जरा हिलाने डुलाने की बारी आ गई है, और दिमाग को क्यों हिला रहे अपनी तबियत खराब करके, है ना। स्टेडियो मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स
3: बंद हो गया,
4: अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026. एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do this.

सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करती हूँ आपका ईद का जो फेस्टिव्स है वो बहुत अमेजिंग जा रहे हैं। मिर्ची ईशा आ गई है वीकेंड वाइब्स लेके, जहाँ पे आपको बताएगी वो सारी स्टोरीज, सारे इवेंट, सारे एग्जीबिशन, सब कुछ कवर करेगी ऑन माय शो, जहाँ पे हम बात करते हैं वीकेंड्स की। और अभी इस समय जैसे ईद की सेलिब्रेशंस जारी हैं, चल रही हैं, तो बस उसी से रिलेटेड आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी हियर ऑन माय शो। बस उसके लिए करना गया मेरे साथ, बने रहना यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: मोबाइल पे
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
1: डिस्टरबेंस आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

कतर में हया बया सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि बच्चों परिवारों और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत प्यारा ट्रेडिशनल एहसास माना जाता है। दोस्तों कतर में होने वाला हया बया होता है ठीक ईद अल अदा से एक दिन पहले, जहां पे बच्चियां ट्रेडिशनल कपड़े डालकर फैमिली के साथ जाती हैं सी साइड, जहां पे हम देखते हैं कि बच्चियां हाथों में हरे रंग के पौधे का गमला लेकर निकलती हैं सी साइड की तरफ। गाना हया बया गाने के बाद उसको फेंकती हैं सी में। दैट इज अ ट्रेडिशन जो फॉलो करा जा रहा है बहुत सालों पहले से अब तक। एंड ये ट्रेडिशन बेसिकली ईद अल अदा से पहले किया जाता है, और ये मौका कि हम किस तरीके से अपने रिचुअल अपनी रूट्स के साथ कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और जुड़े हैं। और हया बया हमें याद दिलाता है कि ईद सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि कल्चर और साथ में रहना, बच्चों की मुस्कुराहटों का खूबसूरत संगम है। बस ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको ईद की एक्टिविटीज का मिलेगा भरमार। बात कर रही हूँ DFC यानी कि दोहा फेस्टिव सिटी की, जहाँ पे होने वाली हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। एक ऐसी जगह जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस पेंटिंग, अरबिक कैलीग्राफी, स्टोरी टेलिंग या पोएट्री सेशंस, हीरा एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल गेम्स, अरबिक कॉफी, स्विंग वर्कशॉप, पियानो परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंसेज। ओ माई गॉड, इतना कुछ मिल रहा है आपको DFC में। तो भाई, ईद की सेलिब्रेशन है, कुछ तो खास बनता ही है ना। तो इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ आपको जाना चाहिए DFC। एंट्री टोटली फ्री है एंड अंटिल 2 जून तक है ये। तो भाई 2 जून तक चल रहा है, क्या ही कहने। जा सकते हैं इन ईद की छुट्टियों में, खुशियां बांटिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और इस इवेंट को भूलिएगा मत। जाइएगा और एंजॉय करिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: एकदम सही सुना तुमने। किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
4: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
5: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
6: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी।
3: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
4: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot. It's hot.

कतर की अगर आप लोकेशंस चेक करोगे ना, कभी कभी फीलिंग आता है या आप यूरोप में पहुंच गए, या आप लंदन में पहुंच गए, या आप कहीं और हो। इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि क्या ही कहने। उसमें से मेरी एक फेवरेट है कनत कातिर, जी हाँ, द पर्ल दोहा, जहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत मार्केट लगी मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ टोरबा मार्केट की, जो ऑन द ब्रिज है, जहाँ पे आपको मिलेंगी वो सब खूबसूरत चीजें, चाहे वो हैंडक्राफ्टेड हो, चाहे कुछ बैग्स हो, फ्रूट स्टॉल्स एंड वेजिटेबल स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे। एकदम आपको वाइब देगा, नेचर के साथ शॉपिंग करने की जो वाइब होगी ना, वो एकदम टोपी में रिलीज करेगी आप। इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होती है। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाता है, और उसके अलावा बता दूं ये 30 मई तक है, तो आप आराम से जा सकते हैं। किसी भी दिन जाइए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड सॉल्ट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मिर्ची स्टोरीज,
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची आ चुकी है शाम शानदार में आपके साथ बहुत सारी बातें करने और बहुत से इवेंट्स बताने। जी हाँ, अभी ईद का मौका है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस कतर में चल रही हैं। और उसके तहत आपको एक और जगह बता दूं, पर्ल आइलैंड एंड गिवान आइलैंड, जहाँ पे होने वाली है ईद अल अदा की बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एसी है, आउटडोर भी एसी है गिवान आइलैंड, जहाँ पे आप आराम से बिना गर्मी बोले इंजॉय कर सकते हैं इवेंट को। आउटडोर एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी किड्स क्यूरेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे हीना आर्ट के अलावा आपको लाइव परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं, ट्रेडिशनल अर्धा, रोमिंग मास्कट्स एंड चिल्ड्रंस की स्टेज परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं। और क्या चाहिए, इसके अलावा ट्रेडिशनल बहुत सी कतरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बस जाना है और इंजॉय करना है, बच्चों को लेके जाइए और इस ईद इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rámbala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो भाई मानजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख राय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा
2: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
3: पकड़ ले।
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो बोल दो बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखिए, अगर आपको भी अपना शौक है ना कि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और एकदम डर जाना, बस आपके लिए एक ऐसा ही इवेंट लाई हूँ. मैं बात कर रही हूँ फंटाना की. हाल ही में जब मैं इस टेंट में गई और देखा मैंने फंटाना, इट वाज अमेजिंग. रियली मैं OMG वाला मेरा फेस बन चुका था. आई वाज लाइक स्टंड बाय ऑल द स्टंट्स दे हैव डन. उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं नींद की छुट्टियों में जाने के लिए तो जल्दी जाइए. 31 मई तक है ये, हयात प्लाजा में है. एंड ऑल्सो आपको बता दूँ कि द बेस्ट पार्ट वॉज द यू नो वो एक्रोबैट्स जितने भी थे, दे वर सुपर टैलेंटेड. दे ऑल वर सुपर टैलेंटेड. लेकिन हाँ, बात ये है कि अगर आप कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं, अगर आपको भी मज़ा आता है ये एडवेंचरस एंड स्टंटबाजी देख के, तो भाई ज़रूर जाइए फंटाना देखने. एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

बचपन की बात ही अलग होती थी. कॉटन कैंडी खाते थे लेकिन अब तो कॉटन कैंडी बोलते हैं. हमारे टाइम पे उसको बोलते थे बुढ़ी माँ के बाल या बुढ़ी माँ का चाटा. अगर आप भी इस टर्म से रूबरू हैं, आपको पता है कि इसको ऐसा बोला करते थे बचपन में, तो वेलकम. आप भी मेरे ज़माने से हैं. बट मैं आपको बता दूं कि वो जो कैंडी का कलर होता था कॉटन कैंडी का, इट वाज लाइक पिंक कलर, येलो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे. तो मतलब एकदम सोचने पे मजबूर होता था जब व्हेन वी यूज टू ईट इट, अपने टंग पे रखते थे वो मेल्ट हो जाता था, है ना, वो बिल्कुल शुगर हो जाता था. एंड कितना मज़ा आता था वो खा के, है ना. और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ देखने को भी मिले कुछ ऐसी कैंडी थीम में, तो मैं आपके लिए कैसा इवेंट लाई. जी हाँ, अगर आपको ऐसी कैंडी कलर और ये कैंडी थीम पसंद है तो आपके लिए आ गया है फ्लफी फैंटासिया. जी हाँ, 21 मई से लेके 30 तक ये चलेगा आपके कतर में, एंड इट इज इन मॉल ऑफ कतर. देखिए सबसे बड़ा इवेंट है ये, बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इट विल बी ए लाइव शो जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे इसको इन द मॉर्निंग 9 a.m. से लेके 11 p.m. तक ये रहेगा. एंड फ्लफी फैंटासिया विल बी अ फैंटास्टिक, आई थिंक इट्स अ फैंटाबुलस आइडिया टू गो एंड वॉच विद योर किड्स ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप एक अलग दुनिया में आ जाएंगे, कैंडी की दुनिया में आ जाओगे. यार किसको नहीं मजा आता. तो एंड ऑल्सो मैंने आपको बता दिया इस स्टेज के पास होगा ये, इट्स अ फैंटास्टिक एंड फैंटेसी एक्सपीरियंस. अगर आपको एरोबैटिक्स, डांस या इल्यूजन्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये जाना चाहिए. एंड फॉर मोर ऐसे इवेंट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.

बचपन में मम्मी बोला करती थी कि टाइम इज मनी, बट अब समझ में आता है कि टाइम इज मनी क्यों कहा जाता था। क्योंकि अगर आप टाइम पे हर चीज नहीं करोगे तो टाइम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको कुछ लाइफ में हासिल नहीं करने देगा। तो भाई टाइम मैनेजमेंट करके रहना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ मुझे भी समझ में आ रहा है कि समय हो गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। तो करती हूँ टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Mirchi stories. Stories.
4: Bas 24 ghante hi rahengi.
5: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
6: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बिटी उन्डन हूँ आप, और एक सच्चा फिल्मची अभी थोड़ा सा तो ऑफेंड हो ही गया होगा कि ये क्या बोल रही है श्रुति यार, मतलब अब हम हॉलीवुड से सीखेंगे। हाँ भाई, सीखना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्टेंट वाइज ही नहीं बट एक्चुअली प्रोफेशनैलिटी वाइज भी हमें सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरीके से रणवीर सिंह का डॉन 3 फॉल आउट चल रहा है, जिसके बाद से इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ, उनको बॉयकॉट करने की बात हो गई एंड वॉट नॉट, तो उससे ना मेरे दिमाग में आता है कि इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड हॉलीवुड के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत करे। मतलब ये जो होता है ना कि अच्छा ये एक्टर है, हमें इसको अपनी अगली फिल्म में लेना है, एंड बस वो हैंडशेक वाली डील हो जाती है दो लोगों के बीच में, उसके बाद फिर कोई बात पलटी भी तो आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी के खिलाफ। सो दैट इज द रीजन आई थिंक आई बिलीव दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज है कि भाई अगर आपको मेरे इस फिल्म में काम करना है तो लेट्स साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होना हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वाई आई सेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rápala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
2: ¡Mirchi, murga! ¡Acá!
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs, सिर्फ making charges pay करके। और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
8: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
9: Tum mirchi suno na, jahan entertainment khoob milega.
10: Khoob milega. Khoob milega.
11: Qatar ka number one radio station.
12: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्ट्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्म ची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो चोरी करते हैं?
3: चोरी करते हैं।
0: तीस मार खान के लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ
0: की पहली फिल्म? सोचो।
3: बूम बूम बूम।
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे?
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या।
0: नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अनुष्का ने ये गेम जहाँ छोड़ा है उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइक आई सेड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति, मेरे DMs में जाके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए एंड आई गिव यू अ कॉल एंड आगे का गेम आपके साथ करूंगी कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मिर्ची स्टोरीज
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माई इंस्टाग्राम, और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ होता है।
0: ऑसम। कुछ कुछ होता है कि लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण।
3: डर।
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम ऑसम ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: चाय लवर्स की ये दास्तान जो है ना बड़ी निराली है।
1: मिर्ची अंशु
0: देखिए बात इतनी होती है कि अक्सर ना हमें गर्मी के दिनों में कुछ भी गर्म खाने का दिल नहीं करता है। सलता नहीं यार, ठंडा ठंडा कुछ दो, दही चावल दो, आमरस रोटी दो, गर्म चीजों की बात ही ना करो। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी है जिसके बिना हमारी गर्मी भी पूरी तरह से अधूरी है, वो है गर्मा गर्म चाय की वो प्याली। नहीं, ये कॉम्बिनेशन मुझे आज तक जनरली कभी समझ नहीं आया। तो भैया गर्मी के दिनों में बाकी गर्म चीजें तुम्हें ना पसंद आए लेकिन चाय आखिरकार क्यों, कैसे? देखो ये बात जो है ना आप मुझे बताना जरूर है। हाविंग सेड दैट, गर्मी की बात करते हुए कतर का मौसम जो है इस वक्त एक बार फिर से मुझे याद आ गया। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 41, मिनिमम अराउंड 30। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है इस वक्त पीते रहें, कलेजे दबा के ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, बिंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं।
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है? दिमाग खराब,
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं सोचोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: छोटी छोटी चीजें भी काफी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओ हेलो बाबू मोशाय, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ। लेट मी क्लियर। सो बेसिकली हमारे पास आजकल टाइम नहीं होता यार, तो 2-2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट तो हम सोच भी नहीं पाते। बस ऐसे में आपकी हेल्प के लिए 5 का 5 की लिस्ट के थ्रू कुछ 5 शॉर्ट फिल्मों की बात करने वाली हूँ, जिसको देख के आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होगा। सो लिस्ट की शुरुआत करेंगे अनुकूल से। नंबर 2 पे विल टॉक अबाउट दोबारा अलविदा, नंबर 3 पे द अदर वे, नंबर 4 पे कतरन, एंड नंबर 5 पे बातें की बातें होंगी। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद अनुकूल। ये मूवी आप YouTube पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट कहानी है, जहां हमारे साथ रोबोट्स भी रहते हैं, और फिर मोरालिटी, एथिक्स, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें एग्जामिन होती हैं पूरी स्टोरी लाइन में। इन शॉर्ट, अगर साईफाई मूवीज पसंद है विद अ टच ऑफ इमोशन, देन ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट तो है ही। बाकी मेरी इस लिस्ट की और 4 फिल्मों की बातें अभी बाकी हैं। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि वो सारी बातें लेके अभी वापस आऊंगी। दिस इज मी श्रुति, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi, Mirchi listeners. This is Jacqueline Fernandez.
4: Wishing all of you guys a very, very Eid Mubarak.
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
6: Mirchi 1.
0: It's hot.

0: Heart. Size doesn't matter, Babu Moshai.
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लीजिए। आप जहाँ जा रहे हैं उसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, मैं तो एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फिल्म्स जिसमें साइज मैटर नहीं करता। मतलब 2-2.5 घंटे की फिल्म देख के भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको एक 20-25 मिनट की मूवी देख के आ सकता है मजा। सो बस आज का 5 का 5 की लिस्ट कुछ ऐसी फिल्मों को डेडिकेटेड है जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी अनुकूल। नंबर 2 पे अब बात करना चाहूंगी फिल्म दोबारा अलविदा के बारे में। सो इस मूवी को भी आप YouTube पे देख सकते हैं। एंड ये कहानी है 2 एक्स लवर्स की जो एक लेट नाइट कैब राइड में वापस से टकरा जाते हैं, यू नो, राइड शेयरिंग ऐप की वजह से। और फिर उस पूरे जर्नी में ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं फॉर द पास्ट दैट दे हैव शेयर्ड। फिल्म में बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं, हार्ट ब्रेक, क्लोजर, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस एंड व्हाट नॉट। So if you are going through a breakup, I guess आपको ये movie जरूर देखनी चाहिए। चलो list में आगे बढ़ते हैं, let's talk about the film The Other Way, जिसको आप YouTube पे देख सकते हैं। Well, ये movie एक bride to be रेवा की कहानी explore करती है जो शादी को लेके काफी ज्यादा doubtful है। फिल्म में उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके फियर्स और उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को लेके बहुत सारी बातें हैं। ऑल इन ऑल रेवा की जो जर्नी है वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती है। सो इफ यू आर अ गर्ल एंड शादी को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं तो ये फिल्म जरूर देखना। बाकी लिस्ट में और भी 2 ऐसी ही शॉर्ट फिल्मों की बातें बाकी हैं। बाबू मोशाय, ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि वो सारी बातें वापस यहाँ पे होंगी। मैं हूँ श्रुति एंड इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bol Dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Mirchi stories, stories.
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई कम टाइम में भी ज्यादा मजा मिल सकता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, स्पेसिफिकली वो फिल्में जिनका साइज काफी छोटा है लेकिन वो एंटरटेनमेंट भरपूर दे रही हैं। सो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अनुकूल, नंबर दो पे हमने बात किया दोबारा अलविदा के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड द अदर वे, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म कतरन जो 14 मिनट की कहानी है और आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। कहानी एक एल्डरली कपल की है प्लेड बाय पीयूष मिश्रा एंड अलका आमिन, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत सारी इनकम्पैटिबिलिटी फेस कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट ये फिल्म रिलेशनशिप के ट्रेजिक टॉक्सिसिटी को एक्सप्लोर करती है। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बातें जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर इन। फिल्म में किस तरीके से कुछ दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन ग्रेजुअली उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को, उनके लोनलीनेस, उनके इमोशनल वल्नरेबिलिटी को सामने लेकर आती है इज रियली ब्यूटिफुल। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो प्लीज ये फिल्म जरूर देखना। बाकी मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही शॉर्ट फिल्में ऐड करना चाहो देन कनेक्ट करके बताओ ना मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या फिर इंस्टा पे। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
4: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड दैट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From Bandar.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने। उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: Ja Simran, ja jeere apni zindagi, ja beta, ja.
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: नंबर 17
12: इसमें

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में वो काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की, लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड, ये कोई नहीं बोलता हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा, एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवरथिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना।
3: नंबर 16

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा। Download कीजिए आज ही iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. अर्ज किया है
2: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: फिर खाली हाथ चले आए मेरी ईदी कहाँ है
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं
3: This is Tapsee Pannu.
1: आप सभी को ईद मुबारक
4: It's hot.
1: अरे वाह ये हुई ना बात आपको भी ईद मुबारक
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो
5: Only on 89.6 मिर्ची 1 It's hot.
6: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 50

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बॉस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशंस नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी,

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि YouTube कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Mirchi stories. Stories.
7: Bas 24 ghante hi rahengi.
8: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
9: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: Mirchi, it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
10: Number 13.

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, वो जिनके लिए म्यूजिक बस रन टाइम होता है, आए गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे यहाँ, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकेंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं, एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है। सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।

0: It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is मेहरबान by Shilpa Rao and Ash King.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

Luca from Cocktail 2. Shahid Kapoor is in full charming rogue mode. Kriti Sanon, wo effortless glamour energy leke aa rahi hai. And Pritam Da once again proving ke wo hook banana bhule nahi hai. Lekin internet ko obviously melody se zyada controversy pasand hai. अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशूका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ, हाँ उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge. Number 8.

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
1: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले
1: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 7।

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। मृणाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ अ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे व्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर नेम विच इज क्लोज टू माई हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और एआर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाए, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माई पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
7: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
8: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
9: Number 3.

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है, क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, you know, people or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है, तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही चाहिए।
2: मैं बड़ा ही वही हुआ, मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन टू

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
2: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
3: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार चाय लवर्स की ये दास्तान जो है ना बड़ी निराली है।
1: मिर्ची अंशु
0: देखिए बात इतनी होती है कि अक्सर ना हमें गर्मी के दिनों में कुछ भी गर्म खाने का दिल नहीं करता है। सलता नहीं यार, ठंडा ठंडा कुछ दो, दही चावल दो, आमरस रोटी दो, गर्म चीजों की बात ही ना करो। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी है जिसके बिना हमारी गर्मी भी पूरी तरह से अधूरी है, वो है गर्मा गर्म चाय की वो प्याली। नहीं, ये कॉम्बिनेशन मुझे आज तक जेन्युइनली कभी समझ नहीं आया कि भैया गर्मी के दिनों में बाकी गर्म चीजें तुम्हें ना पसंद आए लेकिन चाय आखिरकार क्यों, कैसे? देखो ये बात जो है ना आप मुझे बताना जरूर है। हैविंग सेड दैट, गर्मी की बात करते हुए कतर का मौसम जो है इस वक्त एक बार फिर से मुझे याद आ गया। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 41, मिनिमम अराउंड 30। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है इस वक्त पीते रहें। कलेजे एंड दिमाग की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार, उनसे समझ लो, जो रेड वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ये पगला
6: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi, this is आमिर खान।
4: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: बात करें ईदिया की तो बच्चों में ईदी बहुत फेमस है। जहाँ बच्चों को ईदी देकर दिखाया जाता है कि उनसे बहुत ही हमें प्यार है, क्योंकि उनको दिया जा रहा है प्यार जो बड़े बुजुर्ग उनको ईदिया के फॉर्म में देते हैं। ईद की जो एलिगेंस होती है ना, वो सिर्फ कपड़ों के साथ जुड़ी नहीं होती। उसके अलावा आप औद परफ्यूम्स की बात करें या फिर बुखूर की बात करें, ये आपको एक अलग ही फीलिंग देता है ईद की। एंड अगर हम बात करें शेयरिंग एंड केयरिंग की, तो आगे बढ़ते हैं, तो शेयरिंग एंड केयरिंग ईद का सबसे बड़ा पार्ट है। जहाँ पे ईद अल अदा हमें ये याद दिलाता है कि हमें उदिया के थ्रू, चैरिटी के थ्रू, हॉस्पिटैलिटी के थ्रू ये अदा करना ही करना है। यानी कि लोगों की मदद करना और लोगों से शेयरिंग करना बहुत ही कीमती चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस इसी के साथ ईद की फेस्टिविटीज़ चलती रहेंगी और भी खूबसूरत बातें हम ईद की करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची, एंड इट्स हॉट।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज।
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची, मिर्ची,

0: एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको ईद की एक्टिविटीज का मिलेगा भरमार। बात कर रही हूँ DFC यानी कि दोहा फेस्टिव सिटी की, जहाँ पे होने वाली हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। एक ऐसी जगह जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस पेंटिंग, एरबिक कैलीग्राफी, स्टोरी टेलिंग या पोएट्री सेशंस, हीरा एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल गेम्स, एरबिक कॉफी, स्विंग वर्कशॉप, पियानो परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंसेज। ओ माई गॉड, इतना कुछ मिल रहा है आपको DFC में। तो भाई, ईद की सेलिब्रेशन है, कुछ तो खास बनता ही है ना। तो इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ आपको जाना चाहिए DFC। एंट्री टोटली फ्री है एंड अंटिल 2 जून तक है ये। तो भाई 2 जून तक चल रहा है कि आई कैन जा सकते हैं इन ईद की छुट्टियों में, खुशियां बांटी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। और इस इवेंट को भूलिएगा मत, जाइएगा और एंजॉय करिएगा। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
0: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: 89.6
0: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
0: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।

0: अल अदा जो जोड़ती है एक फैमिली का प्यार मोहब्बत और लोगों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, ये हमें ईद ही सिखाती है। जहाँ सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्रेयर से, फैमिली सारी गैदर होके इकट्ठा एक परिवार ईद मुबारक करते हुए प्रेयर से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। फिर आती है स्पिरिट ऑफ उदिया, जहाँ पे गिविंग एंड शेयरिंग सबसे ज़्यादा की जाती है एंड फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है कि किस तरीके से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ प्यार बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फैमिली विजिट्स के साथ ईद की और खुशियां बांटते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ मिलते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। जितना ही प्यार बांटते हैं, जितना ही लोगों से मिलते हैं, उतना ही प्यार हमारे आपस में और बढ़ता है। फिर बारी आती है मजलिस गैदरिंग्स की, जहाँ पे गेस्ट को वेलकम किया जाता है गावा के साथ, डेट्स के साथ, स्वीट्स के साथ एंड वार्म कॉन्वर्सेशंस के साथ। बस ऐसी ही और खूबसूरत बातें ईद की आपके साथ करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirci. Iskrabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjetva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद।
1: डिस्टरबेंस आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
4: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कतर में हया बया सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि बच्चों परिवारों और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत प्यारा ट्रेडिशनल एहसास माना जाता है। दोस्तों कतर में होने वाला हया बया होता है ठीक ईद अल अदा से एक दिन पहले, जहां पे बच्चियां ट्रेडिशनल कपड़े डालकर फैमिली के साथ जाती हैं सी साइड, जहां पे हम देखते हैं कि बच्चियां हाथों में हरे रंग के पौधे का गमला लेकर निकलती हैं सी साइड की तरफ। गाना हया बया गाने के बाद उसको फेंकती हैं सी में। दैट इज अ ट्रेडिशन जो फॉलो करा जा रहा है बहुत सालों पहले से अब तक। एंड ये ट्रेडिशन बेसिकली ईद अल अदा से पहले किया जाता है, और ये मौका कि हम किस तरीके से अपने रिचुअल अपनी रूट्स के साथ कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और जुड़े हैं। और हया बया हमें याद दिलाता है कि ईद सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि कल्चर और साथ में रहना बच्चों की मुस्कुराहटों का खूबसूरत संगम है। बस ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं?
3: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: ओ यारो ईद मुबारक, ओ यारो ईद मुबारक। मिर्ची ईशा आ चुकी है शाम शानदार में आपके साथ बहुत सारी बातें करने और बहुत से इवेंट्स बताने। जी हाँ, अभी ईद का मौका है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस कतर में चल रही हैं। और उसके तहत आपको एक और जगह बता दूं, पर्ल आइलैंड एंड गिवान आइलैंड, जहाँ पे होने वाली है ईद अल अदा की बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो एसी है, आउटडोर भी एसी है गिवान आइलैंड, जहाँ पे आप आराम से बिना गर्मी गर्मी बोले इंजॉय कर सकते हैं इवेंट को। आउटडोर एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी किड्स क्यूरेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे हीना आर्ट के अलावा आपको लाइव परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं, ट्रेडिशनल अर्धा, रोमिंग मास्कट्स एंड चिल्ड्रंस की स्टेज परफॉर्मेंसेज मिल सकती हैं। और क्या चाहिए, इसके अलावा ट्रेडिशनल बहुत सी कतरी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बस जाना है और इंजॉय करना है, बच्चों को लेके जाइए और इस ईद इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi, it's hot.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJ करेगा, पर जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabhid wala murga. Mirchi murga.
4: हेलो।
5: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
4: हाँ।
5: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
6: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें।
7: नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
4: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
7: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
4: मीसम नाम है।
7: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
4: 1200 रुपए।
7: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
4: हाँ जी, 1st September 1980।
7: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
4: जी
7: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
4: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
7: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
4: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
7: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
7: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़नेगी। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
4: सर,
8: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
4: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
8: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
4: पिटोगे
8: मेरे साथ, जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
9: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
10: Hey! Basanti, in kutto ke samne mat nachna!
11: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
12: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
13: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ On Mirchi.
14: Number 7.

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलिवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग और नंबर 5, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 6.

0: Indie Top 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Qatar में हैं और driving license भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म. RSL Group of Companies लेकर आया है एक सुनहरा मौका stable income के साथ.
0: अभी कॉल करें 3100-0813.
2: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
3: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
4: हाय दोस्तों, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
3: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot. It's hot.

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hariharan ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound aaj bhi revolutionary hai. 1996 mein unka debut album aaya, jiska part hai गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक एज कृष्णा, एज जीसस, एज अल्लाह, एज एनीवन. एंड दिस इज वेयर दिस song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Humne radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kaneka. Enjoy.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय, माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से, एक position नीचे drop होके this week on गाना number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 3.

0: Indy Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood bol dal, Bollywood bol dal,
2: only on Mirchi, it's hot.
5: Mirchi stories, stories.
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
7: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
8: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत आजकल एवरीथिंग इन बॉलीवुड इज अबाउट द ओपनिंग वीकेंड। सॉन्ग्स, ट्रेलर्स, डायलॉग्स, इवन इमोशंस, सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे

वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे, आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉक 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना। नंबर 20।

क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। दिस इज प्योरली मूड ओवर मेलोडी, टेक्सचर ओवर ट्रेंड। गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, फ्रॉम बंदर।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चलान कट जाएगा। ठीक है
2: साहब जी, कोई ऐसे तो गलत बात है साहब जी, कैसे हो सकता है?
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार, उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
2: उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Only on Mirchi. It's hot.
1: Number 70.

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज,
2: लाइक ऑनेस्टी,
1: लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में वो काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की, लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड, ये कोई नहीं बोलता हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा, एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवरथिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना।
3: नंबर 16,

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Kya aap soch rahe hain ki what do I do with that old gold bangle in my locker? To Malabar Gold and Diamond Smart Exchange ke saath, exchange your old 22 karat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs, sirf making charges pay karke. Aur ab ek aur great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
3: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
4: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
5: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक।
2: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
3: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
6: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 50।

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशंस नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी।

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि YouTube कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मिर्ची स्टोरीज
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
7: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
8: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
9: Number 13.

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, वो जिनके लिए म्यूजिक बस रन टाइम होता है, आए गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकेंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन्स रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं, एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है। सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग्ड वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।

0: It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is Mehrban by Shilpa Rao and Ash King.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
2: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ, हाँ उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number

0: हेलो
1: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
0: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
1: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा, उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
0: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
1: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
0: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
1: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
0: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
1: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
0: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
1: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
0: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
1: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
0: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
1: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
0: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
1: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ले रहा हूँ,
0: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
1: किसकी डेथ हो गई सर?
0: मेरे भाई की डेथ हो गई।
1: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
0: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
1: मैं कहाँ रहा हूँ,
0: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
1: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
0: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
1: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
0: यार।
1: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी,
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
5: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
6: Number 7.

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। नोनाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात्स। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे व्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू, एंड देयर इज आल्सो वन मोर नेम व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और एआर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi, Mirchi listeners. This is Jacqueline Fernandez. Wishing all of you guys a very, very Eid Mubarak. It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
4: Mirchi 1.
0: It's hot.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: Mirchi stories. Stories.
7: Bas 24 ghante hi rahengi.
8: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
9: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
10: नंबर 3।

0: भाव।
1: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
2: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, near people, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
3: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
2: अरे इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही
3: मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ही, वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। And a struggle, everyone has to do struggle, you know. ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
1: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है। Dude, what a line. David sir, happy retirement. लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत, नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉक 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
2: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
3: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है इस्तकबाल और एक ऐसा रोग लगा है जमाने से जिसका इलाज ढूंढे नहीं मिलता यार। उबैद सिद्दीकी साहब का शेर है कि उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, मकी बदलते रहे मकान नहीं बदला। मकी कहते हैं उसको जो किसी मकान में रहता हो। तो आज देखिए आपको एक नया लफ्ज भी मिल गया, उदासी आज भी वैसी है जैसे पहले थी, मकी बदलते रहे मकान नहीं बदला। और यही बात होती है, उदासी ऐसी बीमारी होती है ना कि आपकी रगों में घुस जाती है, फिर वो और उसे निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। बहरहाल सारी उदासियों का इलाज है महफिल में दोस्तों के साथ बैठना और रिलैक्स हो जाना। वही महफिल सजा रहा है आपका ताशी आपके लिए। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Rabbana. Murga, murga. Navid bala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
4: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए? मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: हैं, मोबाइल पे?
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार, खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद।
3: डिस्टरबेंस आ रही है।
5: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब से। बिल्कुल जी, इनका जन्म ऑफ कोर्स 1919 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 2000 सन में ये मुंबई में हमारा साथ छोड़ के चले गए। और इनका जमाना जो शेर जानता है वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन इनका एक गजल के दो शेर आपको नजर करूंगा जो मेरे बड़े पसंदीदा हैं। कहते हैं कि यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। वाह जी वाह, तो जो रोग हुआ है आपको उसका इलाज भी आप ही के पास है। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपकी ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन
1: टारगेट पूरे करन गे हुन बदले रूल जमाने दे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और मैं ना एक ऐसे शहर से आता हूँ तो जो थोड़ा सा क्वेंट टाइप का हुआ करता था, जो थोड़ा सा शांत टाइप का हुआ करता था, अब तो वो भी सारे शहरों की दौड़ में बड़ा आगे है। लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक ज़माने में लखनऊ का अंदाज अलग था। और जब आप लखनऊ से निकल कर किसी बड़े शहर में जाके झांकते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि यार यहाँ तो लोग अलग ही रिदम में हैं, अलग ही लय में दौड़ रहे हैं। और शुरुआत में आपको कामिल बेजादी साहब का ये शेर याद आता है कि क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा कोई पायल कोई झनकार नहीं। अब ऐसी बात सच भी नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स आप शहर में नए आए हो, आप बस उन इलाकों तक नहीं पहुंचे हो जहां पे यू नो नगमा हो, जहां पे पायल हो, जहां पे झनकार हो। लेकिन शुरुआत में तो कामिल बेजादी साहब का ये शेर मेरे ख्याल से हर शख्स जो एक छोटे से शहर से उठ के एक बड़े शहर, एक दौड़ते शहर में आया है, उसको महसूस हुआ होगा कि क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा कोई पायल कोई झनकार नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। और ले गया आया हूं दोस्त नगमे भी पायल भी और झनकार भी। स्टेडियम इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. व्हाट डिड यू स्टील इन योर चाइल्डहुड?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: व्हाट अ वे टू कन्फेस अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi, it's hot.
3: Mirchi stories. Stories.
4: Bas 24 ghante hi rahengi.
5: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, ऐसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया.
6: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी. और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है.
0: Mirchi, it's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ एंड उसी के साथ अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: हाँ जी और आज के इस ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाए शबाना आजमी के पिताजी कैफी आजमी साहब की लिखी हुई एक गजल जिसको जगजीत सिंह जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी आवाज दी उस गजल की एक छोटी सी कोशिश पेशे खिदमत है आपके लिए गौर फरमाइएगा तुम

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और प्यार इतनी ताकतवर चीज होती है ना इश्क, लिटरली भाई, कि आपके लिए आपकी बायोलॉजी को बदल देता है, आपके देखने के नजरिए को बदल देता है इश्क। अब शेर सुनाता हूं आपको, ऑफ कोर्स उसी से रेफरेंस दूंगा। आदिल फारूकी साहब का शेर सुने आप। कहते हैं कि ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। आय हाय हाय हाय। और इतना अच्छा थॉट है ना, ये इतना प्यारा थॉट है, क्योंकि सच में यार जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी से दिल लग जाता है ना, तो चेहरा, फिगर, मतलब ये सब चीजें आई एम श्योर जरूरी होती हैं, बिल्कुल जरूरी होती हैं। लेकिन जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, वो इंसान जो इमोशनल वैल्यू आपके जीवन में ऐड कर रहा होता है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई सारे ये जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये उतनी पकड़ रखना आप पे छोड़ देते हैं। भाई मेरे लिए तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, मैं सच बताऊं आपसे। जिम में भी वर्कआउट कर रहा होता हूं तो आसपास कई ढेर सारी लड़कियां रहती हैं, लेकिन जमीन देख रहा होता हूं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ लिटरली। ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स वगैरह करता हूँ बातें।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पटाक।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आज की कविता आपको इस कविता के छोटे से कॉर्नर में। और बिल्कुल जी, आज की जो कविता है वो वेणुगोपाल जी की तरफ से आ रही है और कविता का नाम है उड़ते हुए। लिखते हैं कि कभी अपने नवजात पंखों को देखता हूं, कभी आकाश को उड़ते हुए, लेकिन ऋणी मैं फिर भी जमीन का हूं। जहां तब भी था जब पंखहीन था, तब भी रहूंगा जब पंख झर जाएंगे। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या ख्याल है कि दोस्त जहां से शुरुआत करी है ना, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो उड़ान आप भर रहे हैं ये तो क्षणिक है, ये तो क्षण भंगुर है, कुछ देर की है, कुछ देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन लौटना तो हम सबको जमीन पे ही है, या फिर जमीन में ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कई बार आपके आर्ट में जो एक म्यूज कभी हुआ करती थी, जो एक शख्स जैसे आप कभी बड़ी मोहब्बत करते थे, वो आपके आर्ट में इतना उतर आता है कि फिर आप जो भी लिखते हैं, जो भी गाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी शक्ल जो है वो दिखने लग जाती है। बशीर बद्र साहब का शेर है, कहते हैं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, आए हाय, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। जिंदाबाद। और कई बार ऐसा भी होता है कि महबूब होते भी हैं, लेकिन लाइफ हैपन्स एंड देन पीपल मूव ऑन, लेकिन वो बातें चलती रहती हैं। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची स्टोरीज,
4: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
5: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
6: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। जीते जीते ढेर सारी रिलेशनशिप्स में रहने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि रिलेशनशिप्स ना तभी चल पाती हैं जब आपको भूलना आता हो, जब आपको किसी मुद्दे से आगे बढ़ना आता हो, ऑफ कोर्स उस पे काम करके, ऑफ कोर्स उसको रिजॉल्व करने के बाद। लेकिन कई बार हमारे जीवन में होता पता है क्या है कि किसी ने, हमारे पार्टनर ने ही कुछ ऐसा किया जो हमने नहीं सोचा था कि वो करेगा, या फिर उसने हमें डिसअपॉइंट करा किसी ना किसी तरीके से, जो कि हर शख्स कभी ना कभी तो करता ही है। आपने अपने माता पिताजी को कितनी बार डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आपके माता पिताजी अब वो रट के हमेशा वही तो नहीं सोचते रहते, है ना, वो तो आगे बढ़ जाते हैं उस बात से। और वैसी जिंदगी में ना आगे बढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। और शेर सुनाऊं आपको मैं जमाल एहसानी साहब का कि याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ। शेर बड़ा जरूरी है, याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। जिंदाबाद, क्या बात है यार, क्योंकि भूलना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको उस रिलेशनशिप को जिंदा रखना है तो। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना जो बड़े जादुई होते हैं। आप दोनों एक पार्टी में हैं और आपने जबान से कुछ नहीं कहा लेकिन आंखों ही आंखों में इशारों ही इशारों में बातें हो गई आपकी। अनु रिजवी का शेर आपको नजर है कि उसे हुनर है निगाहों से बात करने का, उसे हुनर है निगाहों से बात करने का, मैं बेजबान सा लगता हूं ये जबान लिए। हाय हाय हाय हाय, जहां इशारों से बात हो जाए वहां अगर जबान चलानी पड़े घाटा है दोस्त। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख कराए से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल दलाल को पकड़ेंगे सर, हम क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
3: साहब जी,
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उसे पूछो भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी मुखातिब कराए आपको आज के लव्स से जो है अदावत। अदावत एक अरबी लव्स है जिसका मानी होता है दुश्मनी। अब हैदर अली आतिश साहब का शेर देखें जिसमें उन्होंने बड़े खूबसूरती से अदावत का इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। दुश्मन से जो दुश्मनी थी ऐसे दोस्त देख लिए कि भाई दुश्मनी कम हो गई मेरी। दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। अदावत मानी दुश्मनी। बिल्कुल जी, हैदर अली आतिश साहब के इस शेर से अब आपको एक और उर्दू का लफ्ज आता है विच इज अदावत। अदावतें थोड़ी कम रखें जिंदगी में, जिंदगी आराम से चलती है। लेकिन अनअवॉइडेबल भी नहीं है अदावतें, दुश्मनियां होती रहती हैं। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग ट्रूली तो थोड़ी अदावत तो चलती है यार। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे यू बेटर वॉच हर शॉट

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
4: Mirchi 1.
0: It's hot. It's hot. It's hot.

ये आपके साथ। और दोस्त, जिंदगी में ना कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके जहन पे छप जाते हैं, और फिर आप कई बार जो दूसरे लोग हैं उनमें उन्हीं की तलाश कर रहे होते हैं जो आपको एक जमाने में मिले थे। हसन नासिर के दो शेर आपको नजर की, खुले दिलों से मिले फासला भी रखते रहे, खुले दिलों से मिले फासला भी रखते रहे, तमाम उम्र अजब लोग मुझसे उलझे रहे। और शेर आखिर की, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, राबते मतलब कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। आय हाय हाय हाय, ये जो शेर है भाई, इतना जालिम शेर लगता है मुझे ये, कि दरख्त कट गया, पेड़ कट गया, दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे जमी पे बैठे रहे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot. Bollywood bol dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal. Only on Mirchi, it's hot.
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज,
5: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
6: यार तुझे पता है, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की चोरी करने के लिए बोला, पैसे लेके वो तो फरार हो गया और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया।
7: यार इसको ना मिला हनी और ना मिला मनी, और ऊपर से एक और चीज, इस बंदे ने इसको ब्रेकअप नहीं सीधा लॉकअप दिया है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जाते जाते मिर्ची महफिल में अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका दाशी आपको नजर करे एक नगमा जो मेरे जहन में क्या बताऊं बड़े दिनों से टहल रहा है। हाँ जी, भूपिंदर जी की आवाज में ये जो नगमा है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आज के ताशी अनप्लग्ड में मुलायजा फरमाएं।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, फरमाइए। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

चाल बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठान कड़कती कमान, कातिल अदा जालिम हयात।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें।